नया वर्ष को अवसर में बेको का विभिन्न होम अप्लायंस को खरीद में कैशबैक तथा श्योर शॉट गिफ्ट। वॉशिंग मशीन में 6 केजी एरियल मैटिक, डिशवॉशर में वॉशिंग टैबलेट, एयर कंडीशनर में इंस्टॉलेशन और फ्री स्टैंडिंग ओवन में प्रेशर कुकर। नागरिकता मात्र भए पुग्छ, सहज EMI मार्फत खरीद कर सकिन्छ।

शतरंज भी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं. बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना.